0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम को तो प्यार का
1: है,
2: अमन
0: स्वीट स्वीटू स्वीटू स्वीटू स्वीटू प्यार करती हो तुम तो।